द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं सप्तचत्वारिंशत् धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं चतुश्चत्वारिंशदधिकद्विशत धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं षड्नवत्यधिकैकशतं धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।

0: मैं सोचता था कि मैं बहुत नफरत करता हूँ तुझसे। ख्वाब देखता था कि तू मेरे सामने आ जाए और मैं तुझे गोली मार दूँ। आज जब तू सचमुच सामने आ गया है तो मुझे अपने आप से नफरत हो रही है। यार ये क्या धंधा है हमारा? खुद अपने हाथ से अपने बच्चे को गोली मारनी पड़ती है और फिर उसके जनाजे को कंधा देना पड़ता है। लगता है मेरे बुरे कर्मों की यही सजा है।
1: जो हो गया सो हो गया, मैं अब आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं सिमरन को लेकर हमेशा के लिए हिंदुस्तान जा रहा हूं। मुझे जाने दीजिए।
0: जी तो यही करता है, पर क्या करूं बेटा? अगर तुझे मारकर मिसाल पैदा नहीं की तो लोग मुझे हिजड़ा कहेंगे। मेरा लड़का आशिक हो जाएगा और किसी ना किसी रंडी के चक्कर में खान से बगावत करेगा। अब फुल स्टॉप तो लगाना ही पड़ेगा ना। पर तू फिक्र मत कर बेटा, तुझे मार के मैं मिसाल कायम करूंगा और तेरी लैला को जिंदा रख के तेरे मरने के बाद रोज उसे छत पे नंगा, उसके गले में पट्टा डालकर नुमाइश करूंगा ताकि हर आने जाने वाला देख ले कि बाप बेटे के बीच में आने वाले का क्या हर्ष होता है। तू समझ रहा है ना बेटा? मेरे आदमी रोज उसके जिस्म के एक एक हिस्से से खेलेंगे ताकि वो जान सके कि किस तरह हम।
1: मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ।